0: Let me now take you through the top story of the hour. The Himalayan flood fury has left a trail of death and destruction all across Nepal. The death toll has now touched even 100. Over 60 people have also been reported to be injured and are now receiving treatment in different hospitals of the country. Satellite images now show staggering scale of devastation, buildings and bridges even swept away, entire areas transformed by the raging waters. On your screens are the before and after visuals, the satellite visuals from the flood hit areas. But the rescue mission is now in full swing. The Nepal Army, the police and the armed police force are now on ground with more than 250 civilians already rescued and the search for those missing still continuing. Remember that NDTV is the only channel on Ground Zero bringing you the latest visuals and updates from the heart of the disaster. From washed away bridges to submerged towns, our reporters are tracking the devastation and the rescue efforts. Take a look at this report filed by my colleague Sikta Deo.
1: Ground Zero, we are at Nuwakot area of Nepal where the flash floods have hit and damaged and destructed this entire area. You can see a section of people who have taken some rescue on top of some buildings there. Since morning, they have been waiting for relief and rescue personnel to reach them. A few of them we spoke to said they haven't had a sip of water since morning. A massive destruction. You can see the vehicles here submerged totally in destruction which has come with the flash floods which has hit this area. Tibet border. This was the road which used to take the people, the locals, the tourists to the Tibet border. But after today's flash flood, the roads are submerged in silt. It has been continuously raining. The challenge for the army personnel is to reach the higher up mountains. Well, we are at Ground Zero and we can say on record that beyond this has been a challenge, not only for a media team like us to move ahead, but also for the rescue workers, the police personnel and the army. The helicopters are doing the sorties, but still it has been a challenge because the weather has not been conducive and it is continuously raining and it is dark now. So the rescue operations will have to resume tomorrow morning. And till then, the road to the Tibet border where the destruction has been manifold than this area will be coming out, and the ground reports from that area will be coming out tomorrow morning. We are at the Nuwakot district on the banks of Thrissuri River, and this is village Vidur where the destruction is evident from these pictures. And right now here we are with some locals who are trying to locate their known ones, the people from their family, their friends. Aapka naam aur aap kisko dhoondne ke liye aaye hain Kathmandu se?
2: ये इधर का हमारा वो जो घूम गया जो लोग है इधर उस लोग का ढूंढने के लिए आए, लेकिन कुछ नहीं खिलाफ पता चला.
1: फंसे हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं?
2: फंसे उन्हें उनको जानकारी कुछ नहीं है.
1: Well, that's the biggest challenge right now. The moment we reached at this ground zero, it has been continuously raining. The challenge here is to reach the higher mountains, the higher reaches of the villages where the destruction will be much more than what we are seeing here.
3: हम इस वक्त नेपाल के नुवाकोट जिले में मौजूद हैं और हम रुके थे क्योंकि तेज बारिश हो रही थी और हम यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर रहे थे कि हम जब ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं तो कुछ और रिपोर्ट्स हम आप तक पहुँचाएं. तो इस बीच हमें मिले हैं सौरभ और सलीना जो यहाँ पर हमारे साथ रुके हुए थे, और हम जब इनसे बात की तो हमें पता चला कि सौरभ और सलीना वे शख्स हैं जो आज इस इलाके में आए सैलाब के पीड़ित परिवारों में से हैं. इन्होंने अपनों को खोया है नदी के उस पार, त्रिशूली नदी के उस पार. परिवार के बाकी लोग फंसे हुए हैं, ये दोनों इस तरफ फंसे हुए हैं. इनके आंखों के सामने सैलाब में इनका घर बह गया, इनकी दुकानें बह गई. करीना कह रही थी जो कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं यही है इनके पास अब, और घर में अगर वो लौटेंगी भी कल सुबह, वो कोशिश भी करेंगी वापस परिवार के पास जाने के लिए, तो वहां पर कुछ नहीं बचा है. सौरभ, हमारी संवेदनाएं आप लोगों के साथ, और बहुत दुख की घड़ी है हर परिवार के लिए इस इलाके के. ऐसा सैलाब, ऐसा फ्लैश फ्लड इस इलाके ने पहले नेपाल में कभी नहीं देखा. आप लोग क्या कर रहे थे सुबह, और आप लोग खुश नसीब है कि आप लोग बच निकले। क्या देखा था आपने जब सुबह जब वो सैलाब आया?
4: उस समय तो मैं सो रहा था तो भाई ने फोन करके बोला कि बाढ़ आने वाला है, ऊपर से थोड़ा खबर आया है, तो तुरंत ही मैं बाहर निकला। वही टाइम पे पुलिस मैकिंग करते हुए आया कि बाढ़ आने वाला है, सब लोग सतर्क रहो। तो हम जा ही रहे थे कि फैमिली के पास जा ही रहे थे, तो नया पुल अभी बना हुआ है, वहाँ पे पहुंचे तो तुरंत ही बाढ़ आ गया। वो आगे वाला जो हम लोग न्यू पुल से पुराना वाला पुल था वो बाढ़ ने मार के तुरंत उड़ा दिया। तो वही देखते हम लोग भागे, हम लोग भागते सहित पुल पे कई लोग खड़ा थे, उन लोगों को बाहर ले गया।
3: आंखों के सामने आपने आपने तस्वीरें भी रिकॉर्ड की हैं?
4: रिकॉर्ड किया लेकिन वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाया भागने के चक्कर में। ये
3: तस्वीरें सौरभ दिखा रहे हैं जो उनके फोन में है। ऐसा सैलाब आंखों के सामने लोगों को बहाता चला गया, गाँव के गाँव मलबे और गाद में अंदर डूबते चले गए, और इस तरह से ये तबाही इस पूरे इलाके में आज सुबह मची है। सिनीना ऐसा कुछ नहीं आपने अभी तक देखा होगा इस इलाके में?
5: पहली बार
3: आपने देखा? आप क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना, जैसे आपके आप सौरभ बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि सैलाब आने वाला है, ऊपर से बाढ़ का पानी आ रहा है, लगा कि हमको सबसे पहले बच के निकलना है, भाग निकलना है, कैसे आप लोगों ने क्या बाइक में भागे, पैदल भागे, क्या किया तब आपने जब ये अनाउंसमेंट सुना?
5: डर लगा कि बाँच दिन होला थियो, अनि मेरो पछि पछि आयो बाढी चाहिँ।
3: भाग भाग के आप लोग?
5: मेरे पीछे पीछे था बाढी,
3: बाढ़ का पानी आपके पीछे पीछे था और आप आगे आगे भाग रहे थे।
4: थोड़ी सी देर होता था हम लोगों को बाहर ले जाता है, हम लोगों के पीछे बड़ी मम्मी और मेरा बड़ी मम्मी का लड़का था वो बाहर ले गए,
3: सब भाग रहे थे।
4: हाँ सब भाग रहे थे, हम लोगों के पीछे एक दो तीन लगभग चार आदमी बाहर ले गए,
5: हमारे पीछे जितने भी लोग थे वो सबको भगा
4: ले गए, और ज्यादातर आदमी ऊपर चढ़ गए इसलिए थोड़ा से डरे।
3: वैसे में जब आपके पीछे पीछे पानी था और आप लोग भाग रहे थे, अभी ऐसा लगा कि क्या होगा अगर पानी हमारे तक आ जाए, तो वो डर भी हो रहा होगा, जरूर रहा होगा। और आप लोगों खुश नसीब लोगों में हैं जो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं, और ऐसे कई लोग इस इलाके के लापता भी बताए जा रहे हैं। अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि अभी रेस्क्यू का भी काम रुका हुआ है, और बारिश हो रही है तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर नहीं जा पा रहे। वहां पर कुछ जानकारी अपने परिवार से बात हो पा रही है?
4: परिवार से कॉन्टेक्ट हुआ है, उन लोग अभी सेफ है, अभी लेकिन अभी
3: भी फोन मिला पाए, अपने माता पिता से बात कर पाए?
4: अभी तो नहीं लग रहा है, अभी
3: नहीं लग रहा,
4: अभी कांटेक्ट नहीं है, नेटवर्क नहीं है।
3: हिम्मत करनी होगी, कल एक नई सुबह है और अपनों के पास आप लोगों को पहुंचना है, और ये कोशिश कल आप लोग करेंगे जैसे कि आप लोग बता रहे हैं।
4: पहले फैमिली के पास पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर न्यू स्टार्टअप, जीरो से उठ के आएगा तो जीरो में ही स्टार्ट किया जाएगा। अभी इधर से देखा जाए कुछ मदद उदर होता है था
3: हौसले को सलाम, उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार जो इस वक्त उस पार फंसा हुआ है वो सलामत है, और आप लोग कल उनसे जल्द से जल्द मिले, यही शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। शुक्रिया। द सिल्ट हियर हैज सबमर्ज्ड ईच एंड एवरी बिल्डिंग एंड द रिमेन्स लुक लाइक दिस। Well, we are here at a government premises which we used to take care of the cows and the buffaloes here. It was an animal welfare center which is now submerged in silt, like you can see here. The rescue team is here. When we spoke to them, they said we have no idea how much damage or destruction this flash flood has managed to create in this area. They have been rushed from Kathmandu and they are still awaiting orders, and the silt levels to dry up a little, and overhead we can hear the army helicopters, choppers doing the rounds to keep an eye if there are any survivors up there in the mountains from where the flash flood started, if they can be rescued. The weather is not so good and the rescue operation is the biggest challenge, the weather here for the rescue operation.
6: ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो नेपाल के उत्तरी जिला में, ये रसुआ नाम से जाना जाता है, रसुआ, नुआकोट, धादिंग, गोरखा, ये चार पांच जिला बहुत ही प्रभावित है। और जो हमारे सरकारी और संचार माध्यम से जो जानकारी मिली है उसमें यही है कि वहां पर तिब्बत के बॉर्डर पर कोई जो ये हिमताल फूट गया है, दूसरे लोग कहते हैं कि बाढ़ आया है, और लगभग लगभग अभी भी लोगों का कहना है कि 4-5 हजार लोग लापता है। लापता का मतलब है कि कंफर्म नहीं, सरकारी गृह मंत्रालय स्रोत ने अभी तक ये सूचना, आधिकारिक सूचना नहीं दे पा रही है कि क्या कितने लोगों की

0: Let me now take you through the top story of the hour. The Himalayan flood fury has left a trail of death and destruction all across Nepal. The death toll has now touched even 100. Over 60 people have also been reported to be injured and are now receiving treatment in different hospitals of the country. Satellite images now show staggering scale of devastation, buildings and bridges even swept away, entire areas transformed by the raging waters. On your screens are the before and after visuals, the satellite visuals from the flood hit areas. But the rescue mission is now in full swing. The Nepal Army, the police and the armed police force are now on ground with more than 250 civilians already rescued and the search for those missing still continuing. Remember that NDTV is the only channel on Ground Zero bringing you the latest visuals and updates from the heart of the disaster. From washed away bridges to submerged towns, our reporters are tracking the devastation and the rescue efforts. Take a look at this report filed by my colleague Sikta Deo.
1: Ground Zero, we are at Nuwakot area of Nepal where the flash floods have hit and damaged and destructed this entire area. You can see a section of people who have taken some rescue on top of some buildings there. Since morning, they have been waiting for relief and rescue personnel to reach them. A few of them we spoke to said they haven't had a sip of water since morning. A massive destruction. You can see the vehicles here submerged totally in this destruction, which has come with the flash floods, which has hit this area. Tibet border. This was the road which used to take the people, the locals, the tourists to the Tibet border. But after today's flash flood, the roads are submerged in silt. It has been continuously raining. The challenge for the army personnel is to reach the higher up mountains. Well, we are at Ground Zero and we can say on record that beyond this has been a challenge, not only for a media team like us to move ahead, but also for the rescue workers, the police personnel and the army. The helicopters are doing their sorties, but still it has been a challenge because the weather has not been conducive and it is continuously raining and it is dark now. So the rescue operations will have to resume tomorrow morning. And till then, the road to the Tibet border, where the destruction has been manifold than this area, will be coming out, and the ground reports from that area will be coming out tomorrow morning. We are at the Nuwakot district on the banks of Thrissuri River, and this is village Vidur, where the destruction is evident from these pictures. And right now here we are with some locals who are trying to locate their known ones, the people from their family, their friends. Aapka naam aur aap kisko dhoondne ke liye aaye hain Kathmandu se?
2: ये इधर का हमारा वो जो घूम गया जो लोग है इधर उस लोग का ढूंढने के लिए आए, लेकिन कुछ नहीं खिला पता चला।
1: फंसे हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं?
2: फंसे उन्हें उनको जानकारी कुछ नहीं है।
1: Well, that's the biggest challenge right now. At the moment we reached at this Ground Zero, it has been continuously raining. The challenge here is to reach the higher mountains, the higher reaches of the villages where the destruction will be much more than what we are seeing here.
3: हम इस वक्त नेपाल के नुवाकोट जिले में मौजूद हैं और हम रुके थे क्योंकि तेज बारिश हो रही थी और हम यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर रहे थे कि हम जब ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं तो कुछ और रिपोर्ट्स हम आप तक पहुँचाएं। तो इस बीच हमें मिले हैं सौरभ और सलीना जो यहाँ पर हमारे साथ रुके हुए थे, और हम जब इनसे बात की तो हमें पता चला कि सौरभ और सलीना दो शख्स हैं जो आज इस इलाके में आए सैलाब के पीड़ित परिवारों में से हैं। इन्होंने अपनों को खोया है नदी के उस पार, त्रिशूली नदी के उस पार। परिवार के बाकी लोग फंसे हुए हैं, ये दोनों इस तरफ फंसे हुए हैं। इनके आंखों के सामने सैलाब में इनका घर बह गया, इनकी दुकानें बह गईं। करीना कह रही थी जो कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं यही है इनके पास अब, और घर में अगर वो लौटेंगी भी कल सुबह, वो कोशिश भी करेंगी वापस परिवार के पास जाने के लिए, तो वहां पर कुछ नहीं बचा है। सौरभ, हमारी संवेदनाएं आप लोगों के साथ, और बहुत दुख की घड़ी है हर परिवार के लिए इस इलाके के। ऐसा सैलाब, ऐसा फ्लैश फ्लड इस इलाके ने पहले नेपाल में कभी नहीं देखा। आप लोग क्या कर रहे थे सुबह, और आप लोग खुश नसीब है कि आप लोग बच निकले, क्या देखा था आपने जब सुबह जब वो सैलाब आया?
4: उस समय तो मैं सो रहा था, तो भाई ने फोन करके बोला कि बाढ़ आने वाला है, ऊपर से थोड़ा खबर आया है, तो तुरंत ही मैं बाहर निकला। वही टाइम पे पुलिस मैकिंग करते हुए आया कि बाढ़ आने वाला है, सब लोग सतर्क रहो। तो हम जा ही रहे थे कि फैमिली के पास जा ही रहे थे, तो नया पुल अभी बना हुआ है, वहां पे पहुंची तो तुरंत ही बाढ़ आ गया। वो आगे वाला जो हम लोग न्यू पुल से पुराना वाला पुल था, वो बाढ़ ने मार के तुरंत उड़ा दिया। तो वही देखते हम लोग भागे, हम लोग भागते सहित पुल पे कई लोग खड़ा थे, उन लोगों को बाहर ले गया।
3: आंखों के सामने आपने आपने तस्वीरें भी रिकॉर्ड की हैं?
4: रिकॉर्ड किया हूँ, लेकिन वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाया भागने के चक्कर में। ये
3: तस्वीरें सौरभ दिखा रहे हैं जो उनके फोन में है। ऐसा सैलाब आंखों के सामने लोगों को बहाता चला गया, गाँव के गाँव मलबे और गाद में अंदर डूबते चले गए, और इस तरह से तबाही इस पूरे इलाके में आज सुबह मची है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं आपने अभी तक देखा होगा इस इलाके में?
5: पहली बार
3: आपने देखा? आप क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना, जैसे आपके आप सौरभ बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि सैलाब आने वाला है, ऊपर से बाढ़ का पानी आ रहा है, लगा कि हमको सबसे पहले बच के निकलना है, भाग निकलना है, कैसे आप लोगों ने क्या बाइक में भागे, पैदल भागे, क्या किया तब आपने जब ये अनाउंसमेंट सुना?
5: डर लगा कि बाँच दिन होला, बाँच दिन होला जस्तो लागेको थियो। बाढ़ी से
3: भाग भाग के आप लोग,
5: मेरे पीछे पीछे था बाढ़ी,
3: बाढ़ का पानी आपके पीछे पीछे था, आप आगे आगे भाग रहे थे।
4: थोड़ी सी देर होता था हम लोग को बाहर ले जाता है, हम लोग के पीछे बड़ी मम्मी और मेरा बड़ी मम्मी का लड़का था, वो बाहर ले गए,
3: सब भाग रहे थे।
4: हाँ, सब भाग रहे थे, हम लोग के पीछे एक दो तीन लगभग चार आदमी बाहर ले गए,
5: हमारे पीछे जितने भी लोग थे सबको भगा
4: ले गए, और ज्यादातर आदमी ऊपर चढ़ गए, इसलिए थोड़ा से
3: डर। वैसे में जब आपके पीछे पीछे पानी था और आप लोग भाग रहे थे, अभी ऐसा लगा कि क्या होगा अगर पानी हमारे तक आ जाए, तो वो डर भी हो रहा होगा, जरूर रहा होगा। और आप लोगों खुश नसीब लोगों में हैं जो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं, और ऐसे कई लोग इस इलाके के लापता भी बताए जा रहे हैं। अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि अभी रेस्क्यू का भी काम रुका हुआ है, और बारिश हो रही है तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर नहीं जा पा रहे। वहां पर कुछ जानकारी अपने परिवार से बात हो पा रही है?
4: परिवार से कॉन्टेक्ट हुआ है, उन लोग अभी सेफ है, अभी लेकिन अभी
3: फोन मिला पाए, अपने माता पिता से बात कर पाए?
4: अभी तो नहीं लग रहा है, अभी
3: नहीं लग रहा,
4: अभी कांटेक्ट नहीं है, नेटवर्क नहीं है।
3: अब हिम्मत करनी होगी, कल एक नई सुबह है और अपनों के पास आप लोगों को पहुंचना है, और ये कोशिश कल आप लोग करेंगे जैसे कि आप लोग बता रहे हैं।
4: पहले फैमिली के पास पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर न्यू स्टार्टअप, जीरो से उठ के आएगा तो जीरो में ही स्टार्ट किया जाएगा। अभी इधर से देखा जाए कुछ मदद उदर होता है,
3: हौसले को सलाम, उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार जो इस वक्त उस पार फंसा हुआ है वो सलामत है, और आप लोग कल उनसे जल्द से जल्द मिले, यही शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। शुक्रिया।
1: द सिल्ट हियर हैज सबमर्ज्ड ईच एंड एवरी बिल्डिंग एंड द रिमेन्स लुक लाइक दिस। Well, we are here at a government premises which we used to take care of the cows and the buffaloes here. It was an animal welfare center which is now submerged in silt, like you can see here. The rescue team is here. When we spoke to them, they said we have no idea how much damage or destruction this flash flood has managed to create in this area. They have been rushed from Kathmandu and they are still awaiting orders, and the silt levels to dry up a little, and overhead we can hear the army helicopters, choppers doing the rounds to keep an eye if there are any survivors up there in the mountains from where the flash flood started, if they can be rescued. The weather is not so good, and the rescue operation is the biggest challenge, the weather here for the rescue operation.
6: ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो नेपाल के उत्तरी जिला में, ये रसुआ नाम से जाना जाता है, रसुआ, नुआकोट, धादिंग, गोरखा, ये चार पांच जिला बहुत ही प्रभावित है। और जो हमारे सरकारी और संचार माध्यम से जो जानकारी मिली है उसमें यही है कि वहां पर तिब्बत के बॉर्डर पर कोई जो ये हिमताल फूट गया है, दूसरे लोग कहते हैं कि बाढ़ आया है, और लगभग लगभग अभी भी लोगों का कहना है कि 4-5 हजार लोग लापता है। लापता का मतलब है कि कन्फर्म नहीं, सरकारी गृह मंत्रालय स्रोत ने अभी तक ये सूचना, आधिकारिक सूचना नहीं दे पा रही है कि क्या, कितने लोगों की आहत हुई है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, लापता है। सुरक्षा कर्मी, प्रहरी भी लापता है, पर्यटक भी लापता है।
7: The government many times, several times, talked about resiliency, talked about investing in more infrastructures which are climate adaptive and resilient. But somewhere they limited, got limited in the papers only. They were not actually implemented in the ground. And this is clearly because of the reason that even the Nepal government has not enough resources from its GDP to invest in such kinds of intervention. And this is also a matter of justice, and Nepal government is also not being able to get the public, the multilateral funds to be invested.
8: The situation is very alarming. Since the event happened, there has been a lot of response from the government side, but the problem is the scale of devastation is so huge that the existing response mechanism and response capacities are not being able to fulfill the demand, the extent of damage and loss. And what currently the government of Nepal and the related stakeholder are doing is trying to, first, because when the incident happens, the first priority is to save the lives. So for that reason, we have the response window where we're trying the government along with other stakeholder and local security forces, local government, and all the stakeholders are trying to look.
0: Well, more than 105 Indians are missing in Nepal after the flash floods yesterday. The Ministry of External Affairs is now in touch with various state governments. As to reports, 57 pilgrims from Tamil Nadu were affected by the flash floods. They were en route to Tibet. Now the government is also trying to establish contact with them. Meanwhile, 32 people from Kolkata on a Kailash Mansarovar tour also went missing, while 6 pilgrims from Durgapur were also missing. Isha Foundation-led Kailash group was reportedly caught in the flash floods, with Sadhguru even confirming the status of 77 pilgrims being unknown, with no official confirmation on their whereabouts. Sadhguru also said that the foundation is ready for rescue and support amid the tragedy.
9: So what is the current update as far as the flash floods is going?
10: So you must be aware that since morning this GLOF has hit the Tibetan, and further it has come down to Nepal. And after that, MHE was closely monitoring. You must have heard our Honorable PM has spoken to the PM of Nepal also, and whatever assistance is required. Further, as far as Indian territory is concerned, the state governments are closely monitoring, and as per the assessment, two teams specifically for keeping in view this situation, one team at West Champaran and the other team at Muzaffarpur. So in total, there are 9 teams which are deployed in Bihar, and we are keeping a close watch. We have already kept more teams on standby.
9: What are all those districts, and especially what all those villages near the UP belt and the Bihar belt, which can be impacted due to this flash flood?
10: So if you see the Gandak River basin, the main district is Kushinagar, and adjoining the Gorakhpur district. So Kushinagar, we have already deployed one team, and the main part is in Bihar. So Bihar, we have already deployed two teams. Rest teams are there to assist.
9: Is there any specific deployment on the branches itself?
10: Barrages, basically barrages, there are no people there. So basically we are there as a response. So we are there in the areas where the people are living and to assist the state government to evacuate or to take the people to the safer zones.
0: Right. Well, like we've been tracking all morning, Nepal is battling a devastating flood crisis with the death toll now touching as much as 95. Flash floods have caused widespread destruction and India has even stepped up as the Vishwa Bandhu. India has in fact dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief material to flood-hit Nepal. The consignment includes temporary shelters, blankets, hygiene kits, solar lamps and even essential medicines. Now the aid has been now handed over in Kathmandu. The Indian Air Force rescue teams have also been deployed in the area and the Nepalese Prime Minister has also thanked the Prime Minister for humanitarian support. We're tracking some more updates coming in. Now, Nepal's devastating flash floods have put even India on high alert. From Bihar to Uttarakhand and even Uttar Pradesh, authorities are now bracing for a possible flood impact. The focus is now on preparedness, with authorities monitoring river levels, embankments and even vulnerable areas. Rescue teams have been alerted while border districts remain under close watch. The flood threat has now triggered heightened preparedness all across border states. Bihar has placed districts and embankments on round, on clock watch, while Uttar Pradesh is now monitoring key rivers and even border areas. Uttarakhand also has now stepped up vigilance along, in fact, the Sharda River. The SSB has activated its rescue grid with 11 teams alerted and 7 more on standby. Border formations are now monitoring key river systems and even coordinating with the local authorities on ground zero. With that, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: electricity bill paid.
1: Really?
0: Your mobile recharge is done.
1: How?
0: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
1: It's the Mahi way. Hindustan mile,
2: Hindustan se. Desh ka tire, JK tire.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा, सबका राजा आग प्योर मसाला।
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
7: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ जागर आनंद एट एनडीटीवी, वॉक द टॉक।
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
8: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
9: कुछ इससे भी अनोखा,
8: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
10: Across the country,
11: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now

0: matters.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाह मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
1: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमैन बनना नहीं आसान है।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन,
3: हाउ
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ, यूज भीम ऐप टू पे,
3: इट्स द माही वे।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
7: अरे मेरे राजा।

0: levels of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
1: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात
4: वाओ मामा क्या स्वाद है
5: अरे मेरे राजा

0: Thank you very much, Rahul. Well, before we get the day started, and we would like to thank everyone who has made this inaugural edition of NDTV World Anviksha possible here in Kathmandu, Nepal. NDTV World Anviksha, Ideas Across Borders, the Nepal-India Dialogue, is presented by Patanjali Dant Kanti, co-presented by the MAV Group, powered by PhonePay and Asian Paints Nepal.
1: कार्यक्रम के लिए हम धन्यवाद करते हैं एजुकेशन पार्टनर पारुल यूनिवर्सिटी, न्यूट्रिशन पार्टनर सुधा, एसोसिएट पार्टनर्स गोल्ड स्टार शूज, पंचकन्या ग्रुप, पद्मज्योति ग्रुप, बैंकिंग पार्टनर नेपाल एसबीआई, मीडिया पार्टनर कांतिपुर मीडिया ग्रुप। अपने अगले सेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cash back of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
5: सबका राजा प्योर मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
7: Food is music. Synchrony of so many elements. I am a conductor of chaos. Chef Gagar Anand at NDTV, Bong the Talk.
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ गागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज। He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

सिर्फ 13 खेलों में हिस्सा लिया था। 20 से ज्यादा खेलों में तो भारत की भागीदारी ही नहीं थी, और इन 20 से ज्यादा खेलों में कई सारे खेल ऐसे हैं जिनका नाम तक देश में लोगों ने शायद ही सुना हो। दुनिया के दूसरे देश उन खेलों में मेडल जीतते हैं और हम उनमें हिस्सा ही नहीं लेते। हमें मेडल टैली बढ़ाने के लिए इन खेलों में भी महारत हासिल करनी ही होगी। अब जैसे सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, हमारे पास इतनी बड़ी कोस्टलाइन है, इतना बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है जहां इस प्रकार के स्पोर्ट्स के लिए एक स्वाभाविक रुचि हो सकती है। हमारे पास वाटर स्पोर्ट से लेकर विंटर स्पोर्ट तक के लिए डेमोग्राफी भी है और जियोग्राफी भी है, लेकिन फिर भी हम ऐसे खेलों में दुनिया में कहीं दिखते ही नहीं है। इसलिए हमें अलग अलग जिलों में ऐसी संभावनाओं को तलाशना होगा जहां किसी एक खास स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम विकसित हो सके, और इसमें आज के इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी, और मैं आप सभी को भरोसा देता हूं इसके लिए सरकार की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए सरकार उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। साथियों, हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले। हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी स्पोर्ट्स साइंस, ट्रेनिंग, कोचिंग और अनुभव साझा करने के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं। साथियों, स्पोर्ट्स को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये आयोजन भी
इसका उदाहरण है खेलो इंडिया संवाद। सिर्फ खेल की बात करने का कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसे संवाद का मंच है जिसका एक एक विचार देश के स्पोर्ट्स विजन को एक नई दिशा दे सकता है। और इसके साथ जो युवा संवाद हो रहा है वो कार्यक्रम आपके आइडियाज और एस्पिरेशंस को देश के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस कार्यक्रम में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, टैलेंट डेवलपमेंट, गवर्नेंस और विकसित भारत को लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनके सुझाव क्या है, इन बातों को सुना जाएगा और पॉलिसी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। इसलिए आप सबसे कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस मंच का सार्थक उपयोग कीजिए, नए आइडियाज आने दीजिए। युवा शक्ति के ये नए आइडियाज ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत बनेंगे। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं एक स्वस्थ समाज के लिए, एक अच्छी पारिवारिक व्यवस्था के लिए, एक बेहतर कार्य संस्कृति के लिए स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट बहुत जरूरी होती है। और ये स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट खेल के मैदान में गए बिना सीखनी बहुत मुश्किल होती है। खेल हमें केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि खेल हमें एक बेहतर कंपटीटर बनाना भी सिखाता है। उठना, गिरना, गिरकर फिर से उठना, स्पोर्ट्स ये जज्बा हमारे भीतर लाता है। साथियों, खेलों से जीवन कैसे बदलता है, इसका एक बड़ा उदाहरण हमारे पैरा एथलीट्स हैं। पैरा एथलीट्स को जब कोई मैदान में देखता है तो जीवन के बारे में सोचने का नजरिया बदल ही जाता है। और जब वो कुछ अचीव करता है तो उस एथलीट के साथ ही उसके पूरे परिवार को नई जिंदगी मिल जाती है। वो माँ बाप, भाई बहन जो अपने उस बच्चे को शुरुआती दिनों में संघर्ष करते देखते हैं, उनके लिए उस दिव्यांग खिलाड़ी की सफलता उनके सपनों को, उनके हौसलों को भी एक नई ऊंचाई दे देती है। साथियों, मैं खुद ऐसे प्लेयर से हमेशा इंस्पायर होता रहा हूं। अब जैसे आपने सबने नाम जो सुने हैं, आर्चरी में हमारी एक बेटी एक कमाल की खिलाड़ी है, नाम जानते हैं आप, शीतल। जब पैरालंपिक में उन्होंने मेडल जीता तो पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान गर्व से भर उठा। ऐसे ही हमारी एक और बेटी अवनी लेखरा है, जिन्होंने दो दो बार पैरालंपिक के मेडल जीते। मैं जब भी बेटी अवनी से मिलता हूं बहुत गर्व महसूस करता हूं। सुमित अंतिल हो, नितेश कुमार हो, और अभी अभी तो आपने नाम सुना होगा हमारे झंडू कुमार,

ऐसे हमारे पैरा एथलीट्स हैं, ऐसे हर साथी हमें भी प्रेरित करते हैं। साथियों, स्पोर्ट्स एक बेहतर जीवन की गारंटी है। स्पोर्ट्स हमें बेहतर जीवन जीने के लिए फिट बनाता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करता है। हम सभी फौजा सिंह जी के बारे में जानते हैं। पिछले वर्ष 100 वर्ष से ज्यादा की आयु में फौजा सिंह जी का निधन हुआ है। खेल के प्रति प्यार हो, फिटनेस हो, तो कैसे जीवन पर्यंत चलता है, फौजा सिंह जी इसकी मिसाल थे। उनका जीवन इस बात की बहुत बड़ी प्रेरणा है कि कैसे स्पोर्ट्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपस में जुड़े हुए हैं। साथियों, स्पोर्ट्स का एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, जो असली खिलाड़ी होते हैं उनमें ड्रग्स नशे से दूर रहने की इच्छा शक्ति भी पैदा हो जाती है। आज जब नशे की इतनी बड़ी चुनौती युवाओं के सामने है, तो स्पोर्ट्स इसमें भी बहुत सार्थक भूमिका निभाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत में स्पोर्ट्स एक बेहतरीन प्रोफेशन के तौर पर उभरा है। समाज में स्पोर्ट्स को लेकर नजरिया बदला है। आज आप देखिए, हमारे देश में लोग ट्रायथलॉन में हिस्सा ले रहे हैं, 5K और 10K रेसेस दौड़ रहे हैं, यार दोस्त मिलकर हाई रॉक्स जैसे चैलेंजेस को पूरा कर रहे हैं, कोई पहली बार शीर्षासन करने की खुशी मना रहा है, तो कोई दोस्तों और फैमिली के साथ मिलकर पीकल बॉल और बैडमिंटन खेल रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर इसको एक बड़े नजरिए से देखें, तो इसमें बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। चेंज ये कि स्पोर्ट्स अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। अगर पढ़ाई और कैरियर का टाइम टेबल बन रहा है, तो दिन भर के रूटीन में स्पोर्ट्स को भी जगह मिल रही है। और यही चेंज है, यही परिवर्तन है जिसके कारण भारत के स्पोर्ट्स फ्यूचर पर भरोसा भी बढ़ रहा है। साथियों, देश में स्पोर्ट्स कल्चर तभी बनता है जब सामान्य मानवी से जुड़े, जब स्कूल्स स्पोर्ट्स के पीरियड को को-करिकुलर नहीं जीवन का हिस्सा माने। जब ऐसा होता है, तो इससे टैलेंट पूल भी बढ़ता है और स्पोर्ट्स को करियर मानने वाले बच्चों को उनकी फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर्स की अहमियत है, प्ले स्टेशन से ज्यादा प्ले ग्राउंड की अहमियत है। और ये तभी होगा जब आप सब युवा साथी इस अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, मुझे भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य और उसकी सफलता पर बहुत भरोसा है। मैं देश के हर युवा से कहना चाहता हूं, खेल के मैदान में हो या समाज के बीच, आपकी भागीदारी ही भारत की शक्ति है। आपको खेल से प्यार है, तो इससे जुड़ने के अनेक माध्यम बन रहे हैं। अब नए नए स्पोर्ट्स

इक्विपमेंट आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रेनिंग और कोचिंग के तरीके बदल गए हैं, खेलों के आयोजन की, उसकी प्रतिस्पर्धा की, उसकी विधाओं की जरूरतें बदल गई हैं। इक्विपमेंट डिजाइन है, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजी, एनालिटिक्स, ऐसे अनेक क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे हैं। आपको ये अवसर छोड़ना नहीं है, इसलिए इस संवाद में खुलकर अपने आइडिया सामने रखिए। युवा शक्ति की ये भागीदारी विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर आप सभी युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।

0: मलाबार दुनिया के सबसे बड़े ज्वेलर्स में से एक होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर।
1: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
4: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
2: Your friend said, ye le le.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: देखिए नेविगेट मी टू द नेशनल आर्चरी क्लब। What time is the medal ceremony?
5: The medal ceremony begins at 6:30 p.m.
6: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
7: Kia. Movement that inspires.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: पांच समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। इसके अलावे चीनी, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहां भी कई एक लोग हैं जो वहां पर अभी, चूंकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो लोग वहां पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहां के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहां से निकाला जाए। इसमें से 200 लोग जो है, उसमें से 95 लोग दार्चिन शहर की तरफ, वहां से हिल्सा पार करके नेपाल में आने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लोग जिलोंग शहर में, 30 लोग जुटुलपुक जो कि सागा की तरफ आ रहे हैं, एक और शहर।
1: रेस्ट ऑफ एरिया दोज विल बी सॉल्व बाय अ स्पेशल मैकेनिज्म व्हिच विल बी कंप्राइज्ड बाय टू Foreign Secretary.
2: But did it result in souring relationship with India at that time? Could have been avoided, or do you stand by it?
1: Yes, we still expect that if that mechanism was activated, the diplomatic dialogue to resolve those issues was started, and we were capable enough to engage, I think things may have moved other way, but
3: across the country
4: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Yeah. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV network.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: సో మీ బంధువులందరూ కూడా మీ ముందర చూపిస్తున్నా అండి. జై శ్రీరామ్.
1: 20 తారీఖ్ కో గయే థే, షూటింగ్ కర్నే కే లియే గయే థే, అభీ ఇస్ బిపర్జయ కే లియే అటక్ గయే హై. తో ఆప్ లోగ్ కో భీ జో ఖబర్ హై, ముజే భీ వహీ ఖబర్ హై. హమ్ లోగ్ ఉమీద్ కర్తే హై కి వో ఠీక్ హీ హై, అచ్చే హై. ఉన్కే
2: కోయి సంపర్క్ హో పాయా ఆప్సే ఉన్ లోగో కా?
1: मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन उनके बेटे के साथ हुआ है, तो वो ठीक है.
2: क्या बताया उन्होंने? फंसे हुए हैं,
1: आने के लिए रास्ता उस्ता सब बंद है, तो इसीलिए वो लोग आएंगे, लेकिन अभी ठीक ठाक है.
2: और उनके साथ और कौन कौन थे?
1: उनकी मिसेज गई थी, प्रतिभा मुखर्जी, और वो हमारे घर से गए थे, और बाकी शूटिंग के और अभिनेता अभिनेत्री सब कोई है.
2: वो भी सब कोलकाता के ही है?
1: शायद
3: दंपति गया था 21 तारीख. 21 तारीख मिथिला एक्सप्रेस से वो रक्सल होकर काठमांडू गया था. उधर से 2 दिन रहने के बाद वो लोग प्रसिद्ध किया मानस सरोवर कैलाश के जाने के लिए. उसका एम ही था वो मानस सरोवर कैलाश जाने के लिए. तो वो 2 दिन उधर रहने के बाद वो तो लास्ट जो हमको खबर मिली थी वो जो हुआ था, जो अभी जो डिजास्टर जो हुआ था, उसके पहला दिन वो जिधर रहने था उधर तक 10:30 बजे तक कंफर्म मिला था जो वो ठीक है यार. लेकिन वो दिन सुबह से वो इमिग्रेशन लेकर जाना चाहिए था वो ये में हमारा कैलाश, मानस कैलाश जाने के लिए.
2: अच्छा.
3: हम लोग कब सोचते हैं जो उसी टाइम 8:30 तक वो लोग इमिग्रेशन काउंटर में ही था. इमिग्रेशन काउंटर में था जब 8:30 बजे तक वो डिजास्टर उधर हुआ था.
4: She was been with this Yatra travel. She had done many this pilgrims travels with this Super Yatra, and she was very curious about this Kailasha Yatra, and even she contacted me on the same day, yesterday morning, before she left the hotel. And she said she was fine, and they started the trip. But unfortunately, around midday, we came to know that their bus was missing, and no other information we are receiving till now.
5: लोग कैलाश गए मानसरोवर, चलो जाए के साथ गए थे, ट्रैवल्स के साथ. तो कल से कोई, आज सुबह से उन लोग को कोई बातचीत नहीं हो पा रहा है. तो चलो जाए से भी हम लोग फ़ोन किए थे हम लोग उन लोग से. तो उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को तो आज सुबह, कल रात बात किए थे, आज सुबह 8 बजे 8:05 तक बात किए हैं, तो उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है उन लोग से. सरकार से बोल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग कुछ मदद कीजिए. वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से बहुत कोई गए हैं, कैलकाटा से भी गए हैं, उन लोग को सुरक्षा देकर उन लोग को लौटाने की व्यवस्था कीजिए.
6: I spoke to my parents 7:30 a.m. their time. They were at that time in Saga. This was at the end of their Kailash Yatra. So they had already finished and they were about to leave Saga to come home. As far as I know, after that, they reached the border of Tibet and Nepal at about 9 a.m., Nepali local time, per the Isha Foundation. And they're last known to be at the Yirong Port border crossing office. As far as we know, the flood hit the port office just minutes or 10, 15 minutes after they had arrived there.
7: So at what point did you lose contact with your parents?
6: So a little bit before the flood hit, I have them both on Find My on my iPhone, and it showed me when we woke up this morning, we looked on there and it had basically said that for around 10 hours, their iPhones had not been seen or discoverable by the app.
7: Yeah.
8: All right. So many worried and distraught family members waiting for some news. We'll continue to track all the latest emerging from Nepal. For the moment, slipping into a short break.
9: Has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
10: Hey Kia, navigate me to the National Archery Club. What time is the medal ceremony?
11: The medal ceremony begins at 6:30 p.m.
12: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
13: Kia. Movement that inspires.
14: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात.
15: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
16: अरे मेरे राजा.

0: to the PM of Nepal also, and whatever assistance is required. Further, as far as Indian territory is concerned, the state governments are closely monitoring, and as per the assessment, two teams specifically for keeping in view this situation, one team at West Champaran and the other team at Muzaffarpur. So in total, there are 9 teams which are deployed in Bihar, and we are keeping a close watch. We have already kept more teams on standby.
1: What are all those districts, and especially what all those villages near the UP belt and the Bihar belt, which can be impacted due to this flash flood?
0: So if you see the Gandak River basin, the main district is Kushinagar, and adjoining the Gorakhpur district. So Kushinagar, we have already deployed one team, and the main part is in Bihar. So Bihar, we have already deployed two teams. Rest teams are there to assist.
1: Is there any specific deployment on the barrages itself at this stage?
0: Barrages, there are no people there. So basically, we are there as a response. So we are there in the areas where the people are living, and to assist the state government to evacuate or to take the people to the safer zones.
2: The first aircraft carried about 10 tons of relief material, which included about 7.5 tons of load of NDRF and about 2.5 tons of medicines and other essentials from the Ministry of External Affairs. And we were the first responders. We landed at Kathmandu by about 10:25 p.m. last night. And right now, you can see behind me is a C-17 Globemaster, which is being loaded. And in this aircraft, we are expected to carry up to 37 tons of load, which includes about 27 tons towards NDRF load, like mosquito nets, essentials for daily survival, dignity kits, tarpaulins, and other such stuff which would enable day-to-day living and survival.
3: All right, so very challenging situation on the ground for the Nepalese authorities as the search is on for any survivors. Also, people have been left with nothing. As I said, they've escaped with just the clothes on their backs. NDTV Sikta Deo was the first Indian reporter on the ground there. She sent us this report.
4: Hey, Nepal ka Devi Ghat. प्रलय आने से पहले कल सुबह यहाँ पर चहल पहल रही होगी. यहाँ पर जो आम श्रद्धालु हैं देवी घाट पर पहुँच रहे होंगे, क्योंकि बड़ी मान्यता थी यहाँ के देवी के मंदिर में. तो नेपाल के अलग अलग इलाकों से लोग श्रद्धालु अपने मन में लिए दर्शनों के लिए देवी घाट पहुँचते थे. आज ये देवी घाट, जहाँ पर मंदिर पर और घाट पर बाजार सजता था, आज इस तरह से वीरान है. मलबे और गाद में ये पूरी तरह से इस वक्त डूबा हुआ है. मेरे पीछे आप देख सकते हैं JCB जो लगातार इस वक्त काम कर रहे हैं, गाद और मलबा हटाने का काम कर रहे हैं. और कोशिश यही है कि जो कुछ भी सामान इस वक्त यहाँ के स्थानीय लोगों का बचा हुआ है, मलबे और गाद से उसे निकालें और जितना हो सके यहाँ मौजूद स्थानियों को मदद पहुँचाएँ, क्योंकि ये जो छोटी छोटी उनकी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, वो भी इस सैलाब में बह गई हैं. दोबारा ज़िंदगी को पटरी में लाने के लिए इनकी ज़रूरत होगी. बहुत मशक्क़त और बहुत मुश्किल के बाद जब ये गाद धीरे धीरे आगे बढ़ा है, और क्योंकि आज मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है तो यहाँ पर जो पानी है वो भी सूखना शुरू हुआ है, तो थोड़ा बचाव के काम और राहत के काम में यहाँ मौजूद टीमों को थोड़ी आसानी ज़रूर हो रही है. लेकिन जिस हालत में इस वक्त देवी घाट है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल जब फ्लैश फ्लड के बाद यहाँ सैलाब पहुँचा तो क्या हाल हुआ होगा, कितने लोगों को ये साथ बहा कर ले गया होगा. बहुमंजिला इमारतें देखिए, पहली दूसरी मंजिल तक ये गाद आ चुका है और पूरी तरह से सबमर्ज्ड है, डूबे हुए हैं ये बिल्डिंग्स. कहीं दुकान थी, कहीं होटल्स थे, लोगों के घर थे, और अब वो पूरी तरह से गाद में डूबे हुए हैं. देखिए, आधा दरवाज़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है, खिड़कियाँ नहीं खुल रही हैं. तो ये ज़रूर फर्स्ट फ्लोर होगा और नीचे एक और मंजिल होगी, लेकिन एक मंजिल से ऊपर आकर ये आधी मंजिल तक ये पूरा गाद पहुंच गया. तो कितनी फोर्स के साथ ये सैलाब यहाँ पहुंचा और कितने लोगों ने कुछ थाम कर अपनी ज़िंदगी बचाई, कुछ को वो बचा नहीं पाए. इस वक्त सबसे बड़ा दुख यही है, देवी घाट जो एक बड़ा आस्था का केंद्र था नेपाल में, वो इस हाल में है इस वक्त.
3: All right, Sikta's ground report there. Now, the Nepal flash flood tragedy has also hit India hard. NDTV can confirm that at least 300 Indian nationals are still missing in that flash flood. Our Nepal Foreign Affairs Minister, who spoke exclusively at NDTV World, Anvik Shah in Kathmandu, assured that the safety of civilians is the Nepalese government's priority. Among those missing are 77 people from the Isha Foundation who were part of the Kailash Mansarovar pilgrimage. Sadhguru, who himself is in Tibet right now, made an emotional appeal to the Nepal authorities. A lot of those stranded or missing are also from southern states. Our Tamil Nadu Chief Minister has reviewed the situation as 37 are missing from the state, 32 are part of a travel group are missing from Kolkata, 31 stranded are from Hyderabad and 80 from Maharashtra, while 36 are from the state of Kerala.
5: The profound sense of pain and regret I wish to bring to your notice that there has been a terrible a flash flood between Tibet and Nepal border, and on the Nepali side, as per the Indian news reports, about 484 people have gone missing. And on this side, we don't have any official information. Morning I left to go there personally, and all phones are off, all telecommunications are down, roads are blocked, we are unable to go there. One of our groups

0: Within the hour, we informed all the embassies of these countries, both in India and Nepal, and we've been active in this, but there is really nothing much.
1: So there are many families in India who are anxiously waiting for some information about their loved ones who are now missing in Nepal. We spoke to some of those people, listening to what they had to say.
2: 20 तारीख को गए थे.
3: अच्छा.
2: शूटिंग करने के लिए गए थे. अभी इस विपर्जय के लिए अटक गए हैं. तो आप लोग को भी जो खबर है, मुझे भी वही खबर है. हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो ठीक ही है, अच्छे हैं. उनके
3: कोई संपर्क हो पाया आपसे उन लोगों का?
2: मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन उनके बेटे के साथ हुआ है. तो वो ठीक है.
3: क्या बताएं, उन्होंने फंसे हुए हैं.
2: आने के लिए रास्ता उस्ता सब बंद है, तो इसीलिए वो लोग आएंगे, लेकिन अभी ठीक ठाक है.
3: और उनके साथ और कौन कौन थे?
2: उनकी मिसेज गई थी, प्रतिभा मुखर्जी, और वो हमारे घर से गए थे, और बाकी शूटिंग के और अभिनेता अभिनेत्री सब कोई है.
3: वो भी सब कोलकाता के ही है?
2: शायद
4: সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছিল আমরা কালকেরই, এটা জানতে পারি. কালকে ফোন করেছিলাম, ফোন করতে মানে কোনো যোগাযোগই হচ্ছে না. আর তারপর আমি ফেসবুক বা এতে দেখলাম যে নেপালে এরকম বান ডেকেছে. দিদিরা রওনা হয়েছিল 21 তারিখ, 22 তারিখে কাঠমান্ডু পৌঁছেছিল. কালকে যেখানে ঘটনাটা ঘটেছিল ওইখান থেকে দিদিদের কাল আরও উপরে ওঠার কথা, কিন্তু ঘটনা ঘটার পর থেকে আর মানে কোনো ট্রেসই করতে পারছি না. যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করছি, কোনোভাবেই যোগাযোগ করে উঠতে পারছি না.
1: Right, so family members waiting anxiously for information of their loved ones. With that, we'll slip into a short break. More news coming up on the other side.
5: Rang rang rang rang rang rang din rang rang din re dekho kaise bhi ho din rang bana rahe
6: bojo paints rang bana rahe.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
5: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
5: How?
4: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
5: It's the Mahi way.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: ऑक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है ये।
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
4: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait.

0: Hello and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, when it really matters, on the biggest issues, biggest stories of the day, the buck stops here. And today in People's Sansad, we're going to be talking about what has got the entire country talking. Smash patriarchy. How are you going to smash patriarchy? What even is the definition of this patriarchy? Is this more about politics than about patriarchy itself? Can you be selective when you're talking about smashing? To talk about that and much more, as always, we've got a wonderful group of young, intelligent minds. A huge round of applause for yourself. And to answer all of their questions, we've got an equally brilliant panel, all very familiar faces to all of you. Harshvardhan Tripathi, senior journalist. We've got Shantanu Gupta, author and political analyst. Huda Zariwala, who is really taking Think Pink very seriously today. And we've got Ashutosh Mishra also joining us. Are you going to be smashing Brahminical patriarchy?
1: Well, whatever is good for the society.
0: And, sure, sure. I'm growing, just putting you in this point. Don't get defensive.
1: And growing with times is what has kept the Brahmins and Hindu religion ahead.
0: Okay. No one can argue with that. But now let's start with something. Because we are in Raksha Bandhan week, a lot of fire and fury over one advertisement which was about Raksha Bandhan. We're talking about a jewelry brand which had got actor Kriti Sanon, and it got so heated that eventually even Rahul Gandhi had to jump in. Why? Because of what she was wearing. And people said this is not the way that Raksha Bandhan is celebrated. Eventually, this brand had to pull off the ad. Rahul Gandhi said, you can't police women. Don't tell them what to wear. Harshvardhan ji, patriarchy smash kar rahe hain aur ek jo hai Raksha Bandhan pe itna bawal khada kar diya. Kyun? ऐसे कैसे पेट्रियार्की खत्म होगी?
2: नहीं पद्मजा जी, सबसे पहले तो ये कि स्मैश द ब्राह्मिनिकल पेट्रियार्की था. राहुल जी को लगा कि चुनाव यूपी के नज़दीक हैं तो ब्राह्मिनिकल हटा दिया. लेकिन इस देश में एक और स्मैश द ब्राह्मिनिकल पेट्रियार्की का प्लकार्ड लेकर खड़ा हुआ था, उसका नाम है जैक डोर्सी. आज कहाँ है जैक डोर्सी किसी को पता नहीं. सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, वो स्मैश द ब्राह्मिनिकल पैट्रियार्की का प्लकार्ड लेकर खड़ा था और आज वो नहीं है. मतलब नहीं है, मतलब है लेकिन कहां है किसी को पता नहीं. राहुल जी ने स्मैश द पैट्रियार्की किया है. पॉलिटिकली वो कहां होंगे ये आगे तय होगा. पहली बात तो ये कि इस एड को बनाने वालों को ये पता था कि हमें क्या करना है. नेशनल टेलीविजन पर विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी उनका बढ़िया से प्रचार हो रहा है. हम लोग डिबेट कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया क्योंकि वो खुद मान गए कि ये एड ठीक नहीं था.
0: तो फिर लोगों ने क्यों उनको प्रचार करने दिया बाय ऑब्जेक्टिंग टू इट?
2: नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनको अगर वो एड सही था तो फिर तो उनको विड्रॉ नहीं करना चाहिए था. इसका मतलब जिस कंपनी ने बनाया उसको खुद लग रहा है कि एड ठीक नहीं था. पहली बात तो ये, किसी महिला को क्या पहनना है कैसे पहनना है वो डिसाइड करना सिर्फ वो तय करे, कोई और तय नहीं कर सकता, ना उसके घर वाले, ना हम, ना कोई, ना सोसाइटी, कोई नहीं. लेकिन रक्षाबंधन पर क्या पहनना है और उसको विज्ञापन में इस तरह से प्रेजेंट करना है वो तो वो सोसाइटी तय करेगी जिसके इमोशन रक्षाबंधन के साथ जुड़े हुए.
0: पर क्या इमोशन इससे हर्ट हो सकते हैं? क्या ये इमोशनली हर्ट किया था? मतलब महिलाएं तो सब कुछ पहनती है ना, अलग अलग तरीके के ब्लाउजेस होते हैं, साड़ी होते हैं, ड्रेस होती है.
2: नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं.
0: कई बार देर से उठते हैं तो फिर मम्मी कहती है कि जो पहने हो उसी में कर लो.
2: आ जाओ, लेकिन घर में आप कैसे पहन के, कौन से कपड़े हैं, और भाई बहन क्या, दोनों अगर सिबलिंग है तो कैसे रहते हैं, उनका अपना अलग ही एक मिजाज होता है. लेकिन क्या कोई एड जो बनाया जा रहा है वो ऐसे इसी तरह से कर दिया जाता है? उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता है? उस क्रिएटिव टीम का जो क्रिएटिव फ्रीडम होता है उसमें वो सोचते नहीं? ये वेल डिजाइन था. जिस समय राहुल गांधी वो मनुस्मृति के संदर्भ लेकर आते हैं, जानबूझकर इसको इस तरह से कर रहा था कि ये रिएक्शन आएगा और हम बार बार हिंदुओं पर, हिंदू त्योहार पर, हिंदू आस्था पर हमला करेंगे.
0: ओके, सो यू थिंकिंग दिस इज ऑल कनेक्टेड?
2: यस,
0: हुडा ज़रीवाला, दिस इज ऑल कनेक्टेड. द फैक्ट दैट दिस एडवर्टाइजमेंट कम्स आउट, दिस होल टॉकिंग ऑफ मनुस्मृति, इट्स ऑल कनेक्टेड.
2: कृति सैनन और कंगना रनौत दोनों बड़ी मेरी पसंदीदा अभिनेत्रियां हैं.
0: हुडा ज़रीवाला,
3: वेल फर्स्ट ऑफ आदाब नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. एक बात से, एक शेर से अपनी बात शुरू करती हूँ. बराबरी की बात हो तो दरवाजे भी बराबर हों, बराबरी की बात हो तो दरवाजे भी बराबर हों, सिर्फ किरदार बदलने से कहानी नहीं बदलती. आप अलग अलग किरदारों में लोगों को डालते हैं और चाहते हैं कि एक आपका जो डिबेट है दैट स्पीक्स अबाउट पेट्रियार्की एंड अनदर वन दैट स्मैशेस इट, राइट? यू रिमेंबर इन अ पर्टिकुलर कॉन्क्लेव when Kriti Sanon was with you and I had asked a question. I mean, she's a lovely lady. Come on, let us understand that she's been in the industry for
0: a while.
3: Nobody's
0: being argued. This is not about Kriti Sanon. It is about what she's made to wear.
3: Right. And what she's wearing, she's got the complete right to wear. She's got the complete right to decide. And honestly, you're talking about Raksha Bandhan, a tehwar where brothers and sisters celebrated together. It is supposed to be about protection. So how is what she's wearing relevant to the protection that a brother can provide for her? In her case, the sister, because they tie each other Rakhi, as she's mentioned. So you're talking about smashing the patriarchy on one side, for which Rahul Gandhi ji deserves 100% credit. This is not about going against Hinduism, not about going against any religious practice.
0: So you're saying this is policing what women wear.
3: Exactly.
0: Why should you police what women wear, including Kriti Sanon in tradition?
3: And also, and just one more point. I have been, once upon a time, a fan of Kangana Ranaut movies. Not anymore. Not for the person that she's now become. It saddens me because we share the same curly hair. But that being said, yes, hidden under the hijab. That being said, at her times, we all remember how Kangana Ranaut has appeared in movies. I mean, the kind of, I mean, again, not policing against her, not speaking against her, but then...
0: So you're saying this is double standard? Don't police what women are wearing, Shantanu Gupta.
3: Absolutely. And a woman doing that on top of that, Shantanu even
2: Gupta.
3: More sad.
2: But this is a big thing that Huda Jariwala ji hijab mein ye sab keh rahi hain.
3: Bilkul.
4: Achhi baat hai. Achhi baat.
2: Ye moral policing nahi honi chahiye.
0: No, but she's saying it's a choice.
2: Haan, isiliye main
0: keh raha hoon. That is also a choice.
3: Absolutely is a choice. Absolutely.
0: So don't police what women wear. That is the real essence of patriarchy, Shantanu Gupta.
5: See, first of all, as Harshji said, it's a free advertisement for Jiva. I didn't even know the Jiva brand. I just asked some of the people which brand it is. They told it's a jewelry brand. Right. So they are not even a religious brand, a Rakhi brand or a Tika brand or a religious Samagri brand, right? So very smartly use the Hindu festival, right? The pretext of a Hindu festival, Raksha Bandhan, and happy Raksha Bandhan to all of you. They have put Kriti Sanon in a certain kind of attire that lot of people did not like, right? They had all the rights to not to withdraw that, but they knew that this will happen.
0: No, but Shantanu Gupta, they could have withdrawn it also because there's so much backlash. No brand wants to be boycotted. No, people.
5: A lot of people supported also. Someone like Rahul Gandhi. Meaning Rahul Gandhi's words have nothing to do with Jiva, right? Rahul Gandhi is such a big word in India.
0: They feel that, you know, aapki sarkar hai, bhai, aap unko ban ban kar doge.
5: I doubt sarkar has any to do with the jewelry brand, right? Sarkar has a lot of
2: comment.
5: Sarkar has a lot of big things to do, right? So the kind of clothes she was doing, normally you will not associate that with the Hindu festival. Even if the boy was wearing a sando and a shorts, people were reacted similarly. And this is not the way you are exploiting a Hindu sentiment to sell your jewelry, right? In any other way, Kriti Sanon is wearing what she is wearing in this movies, nobody is bothered. In that particular ad, when she is exploiting the Hindu sentiment to sell their items, lot of people said, and they withdrew it. They liked the idea.
0: Okay, I'm hearing a lot of mumbling and murmuring over here. Very quickly, Mr. Mishra, and then this lady. Yes.
1: One comment I would like to make. My two friends from the right wing, they are talking about.
2: No, no, we are not from right wing. We are not from right wing.
0: Then are you left wing? Are you from the left wing?
1: They are talking.
2: We are not from right wing.
1: They are talking about Hindu dresses, and the RSS. Have anyone seen what's their uniform? It was a shirt and knicker.
0: Yes. It's
1: and
0: not now actually, shirt and it's sweatpants pant. Now. It's
1: so,
0: sweatpants.
1: So, yeah. Now, from it started with a khadi.
3: Potato, potato.
1: So now they are talking about Hindu dress.
0: This is a very facile Hindu comparison. They are talking about Raksha Bandhan.
1: What I'm trying
0: those
1: to say is
0: those sweatpants also
1: Hindu
0: they wear when they are going
1: so
0: out for pad sanchalan. They are not wearing it to their office, right?
1: No. The thing is that it is Hindu dharma is not so weak that it will be threatened by a dress worn by a woman. You cannot
5: so
1: attack.
5: Keep mocking the Hindu dharma. It's very strong.
3: It
5: keep mocking the Hindu dharma. It's very strong. It's very strong. Keep disrespecting the Hindu dharma. It's very strong.
0: Bandhan is being celebrated. There should be, okay, there can be another advertisement where a woman in full sari, banarsi sari, the whole nine yards also does it. But is this open to interpretation? Yes. What
6: ma'am, I think it's simple. There are three questions which are needed to be asked. Ki personally acceptable hai ki nahi hai, personal opinion sabke hai. And I feel it is amazing. It's fine. There's no problem to it. Reason being, के ट्रेडिशंस इवॉल्व होते रहते हैं. पहले भाई बहन को, बहन भाई को रक्षाबंधन राखी बांधती थी, एंड देन नंद भाभी को बांधने लगी, देन बहन बहन को बांधने लगी, कोई डॉग को बांधने लगा. और क्यों हम किसी के कपड़ों से उनके कल्चर को डिसाइड करने लगेंगे कि उसके कल्चरल ट्रेडिशन क्या है. सेकेंड पॉइंट ये है कि जो सोसाइटी है वो डिसाइड करेगी कल्चरली अप्रोप्रिएट है कि नहीं. तो एड वापस ले लिया गया अगर कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं था तो. तीसरी बात यह है कि हम इसको पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं. एक एड था सिंपल, उसको हमने क्यों हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया गया है, क्यों उसको शाहबानू केस ला रहे हैं बीच में, क्यों हम विमेन रिजर्वेशन बिल ला रहे हैं. उस टाइम पे उसका हो गया ना और कांग्रेस जा चुकी है. अब हम अभी जो मुद्दा एडवर्टाइजमेंट के बारे में, तो एडवर्टाइजमेंट पे स्टिक करते हैं. व्हाई डू वी हैव टू टॉक अबाउट,
3: ओके, व्हाई डू हैव टू बी पॉलिटिसाइज.
5: फर्स्ट शी सेड व्हाई टू ब्रिंग हिंदू मुस्लिम. सी लॉट ऑफ नेटिजंस, व्हाट आर पीपल ऑन द ट्विटर एंड फेसबुक जस्ट कंपेयर्ड, शी विश्ड ईद सम डेज बैक एंड शी इज वेयरिंग अ नाइस हिजाब, शी इज अ हिंदू वुमन, शी वेयरिंग अ नाइस हिजाब एंड सेइंग ओके, if you have a sensibility for a Muslim festival, for Islamic festival, apply the same sensibility to Hindu festival. A lot of people just very plainly with the argument said that, that's all. And Jiva has all the right not to withdraw that. Okay. They like the sensibility. They like the sensibility and withdrew that. Finally the wisdom got into them and they withdrew that.
3: I would say this also, it is about Hindu, it is just about being respectful to everyone.
5: Respectful,
3: right?
5: Yeah.
3: I mean, let's put it this way. Today, if we are doing this particular discussion here, everyone, and I'm sure all of you at different points in your life, you are wearing whatever you want, but you think that you're coming here for a discussion, you will dress up in a shirt, you will dress up in a salwar kameez, you will even dress up in a closed collar shirt. Nobody will come here, you know, wearing what you would wear, say, to a beach. And it's perfectly fine.
4: Right.
3: I'm sure tomorrow Shantanu Gupta will go to a beach, but he will not wear to the studio what he's wearing to the beach. Exactly. It's just about being respectful.
4: But the only concern is, why tell a woman what to wear? She's got the right to decide. I can wear a hijab if I want to. She can wear that dress on a Raksha Bandhan festival if she so chooses to.
3: Okay, answer.
4: That is all where it should end.
7: What I want to tell, मैं अनुराग हूँ, मैं हिंदू हूँ. आप हर चीज में जब हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होने लगती हैं, अगर कृति सनैन के नेकलाइन से मतलब भावनाएं आहत हो गई हैं, राम रहीम जो रेप का कन्विक्टेड है उसको कल उसको सर 17वीं बार पेरोल और फरलो कर कंबाइन कर ले, वो 457 दिन बाहर रह चुका है सर. उसने जिसका रेप किया था वो भी किसी की बहन थी, तो क्या सर उस दिन हिंदू धर्म की भावनाएं आहत नहीं होती? लेट मी कंप्लीट. इस देश में सर महिलाओं की क्या दुर्गति है? आप जिसको नौमी पे पूजते हो, 7 साल 8 साल 10 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है सर, उस पे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत नहीं होती? सेकंड क्वेश्चन मैम, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट ऑफ ADR, 151 आउट ऑफ 543 MPs, उनपे कहीं ना कहीं वुमेन से रिलेटेड केस है. 16 हैव द केसेस डायरेक्टली ऑफ रेप अगेंस्ट द वुमेन. इस देश भारत माता की मंदिर में वैसे लोग बैठे हुए हैं, वहां हिंदू धर्म की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, और कृति सनैन के नेक लाइन से हिंदू धर्म की
2: भावना कोई एतराज नहीं. रक्षाबंधन पर आप ये करें और ये नॉनसेंस टाइप का डिबेट में आप लॉजिक लेकर आते हैं कि ADR के आंकड़े क्या हैं, रेप कहां हो रहा है, इससे कौन एतराज कर रहा है? आप दोनों को मिक्स कैसे कर सकते हैं?
7: कितनी बुरी बात है कि हम वुमेन की बात कर रहे हैं. इज टेलिंग दैट इट इज नॉनसेंस टू
5: कंपैरिजन इज नॉनसेंस. द कंपैरिजन इज
2: नो भाई,
6: अरे आप उनसे बात करो ना,
2: जोश में कम से कम जो बोल रहा हूं समझो. एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दो.
7: ठीक है.
2: जब आप ये कह रहे हैं कि इस देश में रेप होते हैं, इस देश में जो सांसद हैं वो उनके ऊपर ढेर सारे चार्जेज हैं, निश्चित तौर पर उसको ठीक करने की जरूरत है. उनको हम ही लोग चुन के भेजते हैं,
7: पुणे पुणे में, हम पुणे में देयर वाज अ लेकिन पूरे डिबेट
2: के हम उसी मंच पर राहुल गांधी मनुस्मृति का जिक्र करते हैं, उसी मंच पर पुणे में राहुल गांधी मनुस्मृति का जिक्र करते हैं, और वही हिजाब और धर्म की
7: राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर रहा
2: है. ये हिंदू मुस्लिम तो बात सही है, राहुल गांधी कर रहे
6: हैं, मेरी तो
2: बात सही है, आप बुरा नहीं लगता है,
6: मेरी भी
2: बात को बुरा नहीं लगता नहीं लगे मुझे हिंदू फेस्टिवल्स का इस तरह
7: निकलना बुरा था. राम रहीम भी तो हिंदू ही है सर,
5: कौन उसको सपोर्ट कर रहा है?
2: राम रहीम
5: सपोर्ट कर रहा है,
2: पैरोल पर
5: सपोर्ट कर रहा है.
2: एक मिनट सर, एक मिनट,
5: पैरोल लेकर
2: राम रहीम के पैरोल पर मेरा बड़ा स्ट्रांग व्यू है. ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई पैरोल एक बार भी नहीं मिलनी चाहिए.
8: ये लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप बिना लॉजिक के कहीं की चीज कहीं ले आकर
9: आप ये बताइए कि अगर
8: मौलाना कितने मौलाना है जो जेल में फंसे हुए हैं, कितने पादरी जो फंसे हुए, क्या उनका जिक्र हुआ?
0: हुडा जरीवाला डिड अ बिट ऑफ अ फ्रॉइडियन स्लिप हियर व्हेन शी टॉक्ड अबाउट यू नो व्हेन वी हैव द व्हाट द केस यू वर रेफरिंग टू राइट नाउ. Yeah, she said that the Shah Bano rape judgment. It wasn't the Shah Bano, it was the Bilkis Bano. But Shah Bano is again. Shah Bano again is a very interesting thing to bring up at this time.
5: Shah Bano guilt came out.
0: Okay. So let me quickly give you the data for what is being spoken of here. Look, so I want to quickly give you the data for what is being spoken of here. Yes, it is a fact that you had the 17th parole that was granted to somebody like a Gurmeet Singh. And I think it is important that this issue was brought up for the simple reason that this brings out the complete disingenuous way in which the issue of women is debated by politicians across the board. Why is this man being given parole is a good question to ask of the BJP government, which has agreed. Yes, the court granted it, but yes, the BJP government also gave its assent. Imagine he was convicted in August 2017, and in the last 20 years, he has spent over 450 days out of jail. This should not go unquestioned. But at the same time, when we are talking about smashing patriarchy, Hooda Zariwala, the lady whose name you mentioned, Shah Bano, that hangs, that cloud hangs over the Congress party, over Rahul Gandhi. If you went against a poor woman who was getting 200 rupees alimony from her husband, what patriarchy are you smashing, ma'am?
4: Okay. I want to first mention about the Bilkis Bano case and then come to the Shah Bano case. I will come to that. So Bilkis Bano ke rapists are properly garlanded, welcomed by the BJP. How is that allowed? I mean, this is a party that literally understands that rapists are the people that shouldn't even be allowed entry to the gate, let alone given fat, you know, positions. Mm. This is the same RSS. I mean, I wonder on what high horse this is.
0: Will you come to Shah Bano?
4: Yeah, I'm coming to that.
0: Yes.
4: As far as Shah Bano is concerned, see, we are not in the era of Congress at the moment, right? We are at the era of BJP. So let's talk about BJP. Jo bhi,
0: the result of the Shah Bano judgment is being felt by women even today.
4: Okay.
0: It is a legacy that women are living with even today, irrespective of who's in government.
4: I'll come to that. Just one thing I'd like to speak.

0: you know, people, the senior leaders of the RSS, you know, an organization that's not even registered to begin with. I mean, they're going, I don't know what they're going to talk about in New York.
1: That's terrible and discriminatory. Let me ask you this.
2: Yes, somebody, just for information.
0: So, in 52 years, the Indian tricolor flag was not hoisted.
1: Wait, wait, but before that, I really must go across to the students. Okay, so let's not talk about RSS. RSS doesn't get to talk about patriarchy, just a second. But do we get to talk about Meloni? Do we get to talk about Georgia Meloni, who is being referred to in the cheapest way possible? Let's actually listen to what happened in that moment. Remember this moment? And this happened from an official Congress stage by somebody who is going to be, or who says he could be, the prospective Prime Minister. What did Sandeep Dixit say? He said, ki mujhe Meloni pakad ke to nahi samajh liya, samajh ke to nahi pakad liya. Is this not patriarchy?
0: Okay. That happened in a personal capacity. If you want to discuss on that, we can have that.
1: No, it happened from an official Congress stage.
0: Agree. But is the Congress in the ruling agency right now? Is Congress ruling India? It is the BJP. This is diversion. If you're going to talk about Sandeep Dixit, this is going to be diversion. Let's talk about the government in power. The government that doesn't talk about women's safety. The government that doesn't give jobs. The government that doesn't respect gender. The government. The government that does not respect homosexuality or minority.
3: मैम, अगर हम पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिक हम कृति सेनन की पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं, अगर हम उसके ड्रेस पे मॉडर्न पुलिसिंग कर रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि एक हमारा जो हिंदू का फेस्टिवल है उसकी एक रिलीजियस सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि वो रिलीजियस काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हर चीज़ को मॉडर्नाइज करना है, तो मॉडर्नाइज उस वे में करेंगे इसमें सोसाइटी एक्सेप्टेबल हो, तो सोसाइटी उस फेस्टिवल को जीती है, सोसाइटी उस फेस्टिवल को अपनाती है। अब ये नहीं है।
4: एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग इन अ पॉलिटिकल डिबेट. I just want to share the feeling of a girl. So first of all, if we are talking about Hindu religion, basically Sanatan Dharm, so बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है कि just अभी आया है. And पहले से लोग evolve हुए हैं, clothes have evolved, and हर time fashion change होता है, types सबका interest change होता है. Girls like to earlier girls like to wear some other type of clothes, and now they want to wear some other type of clothes. So I don't think कि उस ad में आप लोग feelings देख सकते हैं. It's about the bond of a brother and sister. हम लोग क्यों उनके कपड़ों पे, हम क्यों वहाँ उनके clothes पे देख रहे हैं and judgment pass कर रहे हैं. Better to
1: That kind of evolution happens.
0: Want to quickly respond to that?
1: अरे भाई, let more women speak. Go on.
5: Yes, exactly. That's what I also wanted to say. पहली बात तो रक्षाबंधन है. As sir said कि रक्षाबंधन is a very intricate bond between a brother and sister. So she can wear whatever she comforts to her. So she is not wearing those clothes to the mandir. अगर वो मंदिर में पहन के जाती, that has been a different issue.
6: मैडम, justify कर देते.
5: But
6: मैं बता रहा हूँ.
0: आप different issue. Exam. This.
5: That is a different issue. She is just at home. She is just celebrating. She is just celebrating रक्षाबंधन with her brother at home. So she has a right to wear what she feel comfortable in.
1: Okay, let the young man speak. Bolo.
7: Excellent. मैं दो मुद्दे पर बोलना चाहूँगा. सबसे पहले तो जो हम राजनीतिक पहलू इस पर डिस्कस कर रहे हैं पेट्रियार्की का, उससे मैं इसको थोड़ा दूर ले जा करके जो वास्तविक मुद्दे हैं उस पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा. हर्षवर्धन जी ने जो कहा उस पर मैं दूसरी, पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ. एक कोट है बहुत प्यारा कि अगर पुरुष सिगरेट पीते हैं तो उनके फेफड़े खराब होते हैं, पर अगर एक महिला सिगरेट पीती है तो उसके चरित्र को खराब करार दिया जाता है. तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब वो लोग ये कहते हैं कि ये सिगरेट पी रहे हैं, तो मतलब पुरुषों के पास या तो सम्मान नहीं है, चरित्र नहीं है, या तो महिलाओं के पास फेफड़े नहीं हैं. दूसरी चीज़, जैसे इन्होंने कहा कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये ऐड जो था वो आपत्तिजनक था. हो सकता है आपको आपत्ति लगी हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल कोणार्क के मंदिर को और खजुराहो के मंदिर को भी आपत्तिजनक मानेंगे, और उनको तोड़ने के लिए आपका सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, कर दीजिए यहीं से.
1: तो आपको लग रहा है ये पेट्रियार्कल था?
7: बिल्कुल पेट्रियार्कल है. अरे अगर अगर अगर आप कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं इससे आहत हो रही हैं, तो हमारी तो जो संस्कृति है, हमारा ट्रेडिशन है, वो तो इतना प्रोग्रेसिव है कि हमारे मंदिरों में काम को एक तरह से पूजा गया है, और हम जब काम से ऊपर उठते हैं तो हम मंदिर के अंदर जाते हैं और हम शुद्ध होकर के प्रार्थना

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
4: रियली
3: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
4: How?
3: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
4: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

देश का टायर जेके टायर। जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: और प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
2: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
3: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most.
4: Ram Madhav, National Vice President of BJP and an RSS Pracharak. Welcome to NDTV World, sir. A round of applause for a man who's been with a mission. It's very categorically stated, Ram Madhav doesn't come with a party post.

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
3: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now ND

0: has been ongoing. Several new initiatives have been taken. We organize, for example, visits of young MPs in collaboration with MEA and think tanks from India to spend 10, 15 days in India, see what the Indian development scene is like, and how Nepal's youth and young politicians or young population can fulfill their aspirations as they collaborate with India. That's been the larger objective.
1: We've got young people on both sides of the border looking for quality education, which eventually results in jobs. I studied in St. Paul's, Darjeeling, and the reason I mentioned that is because, I don't know, maybe 30-35% of the students there were Nepali. Some of my oldest friends are from Nepal based on the years that I spent in St. Paul's. But what opportunities exist now for young Nepali students in India, either at schools or in universities and colleges? And how does that fit into a larger issue of cross-border mobility and employment?
0: Well, education, as you mentioned, I mean, it has been one of the stronger pillars of our people-to-people connection. And even today, India is one of the most preferred destinations for most of the Nepali youth who want to pursue education. We support that through provision of scholarships. Annually, we provide about 1,500 scholarships. And these scholarships range from school studies in Nepal and then in India, and to higher degree programs, whether it is postgraduate or PhD programs. And most of the people are going to India are for engineering, medical sciences, or allied fields. Many of them have become successful entrepreneurs in India.
1: Lots of promise over there. Exciting times in the overall relationship. I wish we were discussing this in different circumstances, but India is always ready to help. It really depends on what is needed. Ambassador, it's been wonderful speaking to you. Thank you so much for speaking to us today.
0: Thank you.
2: I think one person that they've been waiting to hear is Manisha Koirala. So thank you very much for joining us here at NDTV and Viksha. We're honored.
3: आपसे बातचीत के लिए बहुत सारे परिचय मैंने तैयार करे, बहुत सारे इंट्रोडक्शंस मैंने तैयार करे, और वो इंट्रोडक्शंस मेरे नहीं थे, वो उन सब लोगों के हैं जो आपकी फिल्मों को इस पूरे समय में देखते रहे हैं. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया. इससे खूबसूरत लव लेटर आज के दौर में भी कोई नहीं लिख पाया है जो उस गीत ने उस समय उस दौर में तय किया. इन सब गीतों को जब हम देखते हैं तो एक तरफ हमें नेपाल की परिस्थिति भी दिखाई देती है, और दूसरी तरफ ये बात भी है कि सिनेमा ने कैसे लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया है, सिनेमा के किरदारों ने कैसे उन आवाज़ों को मंच दिया जिनके पास शायद आवाज़ नहीं थी. और आपके ऐसे किरदार, चाहे 1942 लव स्टोरी हो, सलाम बॉम्बे हो, चाहे उसके बाद की जो फिल्में रही हैं, उन सब में हमने उन किरदारों को देखा. आज के वक्त में जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं इस पूरे दौर को, भारत और नेपाल के रिश्ते आपको कहाँ खड़े दिखाई देते हैं सिनेमा के आईने से, सिनेमा के चश्मे से?
4: मुझे तो लगता है कि जो भारत और नेपाल का जो एक यूनिक रिश्ता है, वेदर हम सब जानते हैं कल्चरली, रिलीजियसली, इन सो मेनी वेज, लैंग्वेज वाइज, यू नो, देर इज अ सर्टन लेवल ऑफ बॉन्ड. और मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि हम लोग आए हैं और हम लोग एक दिन ऊपर चले जाएंगे, विल नॉट, बट द बॉर्डर बिटवीन द टू नेशन, the friendship between the two nation will forever remain. And we as human being, mortal human being, we should always keep that in mind and do whatever we have to do. Abhi aapne filmon ki baat kahi, to main yehi chahungi ki ek collaboration ho Nepal film industry aur Bombay film industry aur Indian film industry ke saath. कुछ आइडियाज़, कुछ नॉलेज आदान प्रदान हो, कुछ अच्छे काम हो, टुगेदर विल बी वंडरफुल.
3: इनफैक्ट जब मैं आपकी फिल्मों का ही जिक्र कर रही थी, बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमें बैठकर सुन रहे हैं वो ज़रूर इस बात से अग्री करेंगे, मनीषा जी के बहुत सारे एवीज़ और पिक्चर्स भी इस वक्त चल रहे हैं, तो वो वक्त जब भारत में आपकी फिल्मों के बाद जिन जिन घरों में लड़कियाँ पैदा हुई उनका नाम मनीषा रखा जाना शुरू हो गया, घुंघराले बाल एक स्टाइल स्टेटमेंट हो गया.

0: मनीषा जी की जो आंखें हैं उनको एक विशेषण के रूप में लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, ये है ओजी ट्रेंड सेटर। और इसलिए मैं चाहूँगी एक बार प्लीज़ आप उनके आर्ट फॉर्म के लिए, उनके सिनेमा के लिए ज़रूर ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आज
1: लेकिन इसमें मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट तो मेरी माँ बेटी है
2: सुशीला जी का।
1: मेरे पिताजी और मेरे
0: गंगा हमेशा हिमालय से बहती हैं और उसके बाद फिर आगे तक पहुंचती चली आती हैं, तो सोर्स हमें दिखाई दे रहा है।
2: यू एंड योर रिस्पेक्टेड मदर सेइंग दैट यू वॉच अ लॉट ऑफ ओटीटी नाउअडेज, बट एनी फिल्म्स दैट यू वॉच्ड इन द रीसेंट टाइम्स, हाउ'स बीन दिस जर्नी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन नॉट जस्ट इन बॉलीवुड, इन द ओवरऑल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एनी थॉट्स ऑफ द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द ओटीटी कल्चर, द न्यू ओरिजिनल कॉन्टेंट दैट इज कमिंग इन, एंड एनी कॉमेंट्स ऑन द लेटेस्ट फिल्म दैट हैव कम इन, एनी फेवरेट्स?
1: So, I think the whole world's, there's a nice transition that is happening since 90s to now. Earlier, cinema was focused towards starship. Now, I think the content is the star, and which is great. You see the floods of talent coming in, which not necessarily a hero material or a heroine material, but flooded with talent and flooded with, you know, zeal. So I love watching movies which could be commercially super hit like Dhurandhar, or I would love to watch a movie like Laapata Ladies, you know, and because I think now the OTT platform gives you options. You can see everything. And because of OTT platform, you don't, you know, it's like earlier, a big production house, big hero, big heroine, and that sort. Today, because of content driven, there's many different kind of actors, many different kind of directors, many different kind of, there's the choices. As long as you're talented and you have something to show, I think you have the viewers.
2: Thank you very much, Manisha.
1: Thank you for having me. Thank you.
2: We are honored to have you. Thank you very much. Thank you.
3: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
4: Hey Kia, navigate me to the National Archery Club. What time is the medal ceremony?
5: The medal ceremony begins at 6:30 p.m.
6: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Trishuli Army Base Camp right now, and as you can see, the arrangements are here being made for the rescue mission for all the victims who are still stuck. This is the Trishuli Bazaar of the Nuwakot district, the biggest marketplace of this area. Now, this is what remains of that biggest bazaar of this area. This wasn't just a marketplace for the locals, but also a big tourist attraction of the tourists who were reaching here and moving ahead towards Mansarovar.
1: Police saab, ki jaldi jaldi aap log dukaan band kariye, nadi badhne wala hai. तो नदी बढ़ने वाला था, इतना ऊपर तो आएगा नहीं, कभी कोई नहीं सोचा था। लेकिन जब 10 मिनट के बाद पता चला कि वो भोटी कोसट डैम फूट गया, तब ये पता चला कि एक धागा नहीं बचेगा, तब भागते भागते हम लोग अगर आधा मिनट भी लेट किए रहते तो हम लोग भी तीन आदमी और चल गए रहते।
2: 18 वर्ष हो जाते।
0: मदद के लिए आपसे आवाज़ लगा रहा था,
2: आवाज़ लगा रहा था अंकल जी, अंकल जी सही उसको चक्कर नाम भी चल जाते, पूरा बलुआ से तो
0: हम मेरी हाथ देने की कोशिश की आपने,
2: हाथ दिए उसको, हम कालर भी पकड़े नहीं पकड़ा।
3: आप लोग ये कब से बांट रहे हो?
4: कॉल से बांट रहा हूँ जी।
3: अभी तक कितने लोगों को बांटे?
4: कॉल आज 200 कॉल, 200-300 ज्यादा से कॉल भी बांटा था आज 200 को।
3: 500 लोगों को, ट्रक ड्राइवर्स और जो भी फंसे हुए हैं सब लोगों को?
4: जी जी, सब लोग को, ड्राइवर नहीं, जो तीर्थयात्री जो पैसेंजर होता है ना, वो सब लोग को बांट रहा है।
3: क्या क्या दे रहे हैं आप?
4: बिस्कुट, बस बिस्कुट, पानी, नूडल्स जी।
0: This highway used to lead to the Tibet border and then to the Mansarovar, and this was a popular road route for the tourists arriving in Nepal for their Mansarovar Yatra. The rescue teams are still operating by helicopters to actually get some information if they

0: Trishuli Army Base Camp right now, and as you can see, the arrangements are here being made for the rescue mission for all the victims who are still stuck. This is the Trishuli Bazaar of the Nuwakot district, the biggest marketplace of this area. Now, this is what remains of that biggest bazaar of this area. This wasn't just a marketplace for the locals, but also a big tourist attraction of the tourists who are reaching here and moving ahead towards Mansarovar.
1: Police aaya, police hai ki jaldi jaldi aap log dukan band kariye, nadi badhne wala hai. To nadi badhne wala to itna upar ta aayega nahi, koi nahi socha tha. Lekin jab 10 minute ke baad pata chala ki wo Bhoti Kosat dam phut gaya, तब ये पता चला कि एक धागा नहीं बचेगा. तब भागते भागते हम लोग अगर आधा मिनट भी लेट किए रहते तो हम लोग भी तीन आदमी और चल गए रहते.
2: 18 वर्ष हो जाते.
0: मदद के लिए आपसे आवाज लगा रहा था.
2: आवाज लगा रहा था अंकल जी सही उसको चक्कर नाम भी चल जाते पूरा बलुआ से. तो
0: हम मेरी हाथ देने की कोशिश की आपने.
2: हाथ दिए उसको हम कालर भी पकड़े नहीं पकड़ा.
3: आप लोग ये कब से बांट रहे
4: हो? कॉल से बांट रहा हूँ जी.
3: अभी तक कितने लोगों को बांटे?
4: कॉल आज 200 कॉल, 300 ज्यादा से कॉल भी बांटा था आज 200 को.
3: 500 लोगों को, ट्रक ड्राइवर्स और जो भी फंसे हुए हैं सब लोगों को.
4: जी जी सब लोग को, ड्राइवर नहीं, जो तीर्थयात्री जो पैसेंजर होता है ना वो सब लोग को बांट रहा है.
3: क्या क्या दे रहे हैं आप?
4: बिस्कुट, बस बिस्कुट, पानी, नूडल्स.
0: This highway used to lead to the Tibet border and then to the Mansarovar, and this was a popular road route for the tourists arriving in Nepal for their Mansarovar Yatra. The rescue teams are still operating by helicopters to actually get some information if there are people stranded on that side.
3: This is Malekhu, and I'll show you the visuals that the river, the Trishuli River, is flowing in a steady manner. But yesterday when a flood came, the flood water inched up to more than

0: रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।

0: Within the hour, we informed all the embassies of these countries, both in India and Nepal, and we've been active in this, but there is really nothing much.
1: Nature's fury and disaster has taken over Nepal at this hour. It has been such a wonderful place for people to visit, and many went as a pilgrim to Kailas Mansarovar Yatra, and many of them lost their lives. In this very difficult time, let's all show our solidarity with the people of Nepal and the affected families and the government of Nepal. Let's pray to Almighty God to give strength to all the victims who lost their near and dear ones. Let's hope that the country will limp back to normalcy very soon, and let's all work towards saving the environment, especially in the Himalayan region.
2: हम सभी की प्रार्थना और संवेदना नेपाल के नागरिकों के साथ और वहाँ पर अलग अलग जगह से गए टूरिस्टों के साथ है। जो क्षति हुई है उसके प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं। महाराष्ट्र के भी कुछ लोग वहाँ पर हैं, कुछ लोगों से संपर्क हो रहा है। हमने ये प्रयास किया है कि किसी के भी रिश्तेदार अगर वहाँ है तो वो हमसे संपर्क करें। हमारा जो आपत्ति व्यवस्थापन विभाग है, इस विभाग ने इस बारे में पूरी तरीके से कार्रवाई शुरू की है। उन सबको यहाँ पर हम लाएंगे, वहाँ पर भी जो भी मदद उनको चाहिए वो मदद हम देंगे।
3: Let's now listen into the reactions coming in from those stranded and family members of those who are missing.
4: Don't worry, we are all in safe position. We return very happily and safely. By God's grace and Kailashnadunma ventunnadu, Hanumantunma ventunnadu. Ippudaga manaki eppudu ee pramadalu jaragaledu. Pramadalu anna cheppi raavu. Kaakapoyina mem kuda ippudu anni jagratulu teesukuni mem safe ga vastam teliyesto mee bandhulandaru kuda mee mundaru chupistunnandi. Jai Shri Ram.
5: Jai Shri Ram.
6: மொத்தம் 57 பேர் மூணு பஸ்ஸில் போயிருக்காங்க. நேற்று ஈவினிங் வந்து நேபாளத்துலேருந்து திபெத் நோக்கி போகிறப்ப தான் இந்த ஆக்சிடென்ட் வந்து மொதல் பஸ்ஸு போயிட்டாங்க. ரெண்டாவது பஸ் மூணாவது பஸ் போகிறப்ப தான் ஏதோ சவுண்டு கேட்டிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட யார்கிட்டையுமே தொடர்பு கொள்ள முடியல. அப்பப்போ டவர் கிடைக்கிறப்ப தான் பேச முடியுது. நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம், எல்லாத்தையுமே பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம்.
3: Well, as devastation hits Nepal and the rescue ops continues in the country, NDTV CEO and Editor-in-Chief Rahul Kawal has exclusively spoken to Nepal Foreign Minister Shishir Khanal, who gave details on the Indians who are missing in Nepal.
7: Many foreign nationals, including Indians, are feared missing in this tragedy. Can you give us a sense of how you're cooperating with other countries to get rescue and relief to those who need it at the most? And what do you want to tell those watching in India and elsewhere who are very concerned about the status of their loved ones?
8: Many Indian nationals as well as other nationals, those particularly who were either going to